कि विदेश विभाग ने लोगों नूं वधेरे चौकस रहन दी अपील कीती है। इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार शाम नूं व्हाइट हाउस वापस परत आए ते अपनी कैंप डेविड फेरी एक दिन पहला उन्हां वल्लों खत्म कर दित्ती गई। व्हाइट हाउस ते ट्रंप दे जल्दी वापसी दा हालांकि कारण नहीं दस्सिया। इस दौरान रशिया टुडे दी एक रिपोर्ट दे मुताबक अमरीकी B-1B लैंसर बम्बार ने ब्रिटेन दे RAF फेयरफोर्ड एयरबेस तो पूरे आफ्टर बर्नर दे नाल उडान भरी है ते मध्य पूर्व दे वल रवाना हो गया। ईरान दे प्रेस टीवी ने उत्तर पूर्वी सीरिया दे अल हसाकर विच खरब अल जीर एयरबेस दे नेड़े हवाई रक्षा गतिविधि दी भी रिपोर्ट कीती है। अमरीका ने ईरान, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, ईरान, कतर, लेबनान, कुवैत अते जॉर्डन दे विच रह रहे अपने नागरिकां नूं सावधान रहण दे लई कहा है। अमरीका ने कहा कि मध्य पूर्व दे विच चल रहे टकरा तेजी दे नाल वध सकदा है ते इस लई इन्हां देशां दी यात्रा करन वाले अमरीकियां नूं सावधान वरतन दी सलाह दित्ती गई है। उधर यूक्रेन ने रूस ते वड्डा ड्रोन हमला कीता। रिपोर्टां दे मुताबक इक्को समय 1000 तों वध ड्रोन रूस दे वल भेजे गए। रूसी अधिकारियां दे मुताबक मास्को अते इस दे आले दुआले होए हमलियां दे विच घट्टो घट दो लोकां दी जान चली गई है ते इक वड्डी तेल रिफाइनरी दी सहूलत नूं नुकसान पहुंचया है। मास्को दे मेयर सरगेई सोबानियन ने यह दावा कीता कि रूस ने 1600 तों वध ड्रोन रोके ने जिन्हां दे विच लगभग 450 मास्को दे वल वध रहे सन। मास्को दे गवर्नर दे मुताबक वख वख हमलियां दे विच एक 44 साला महिला अते एक बुजुर्ग व्यक्ति दी जान चली गई है। इस तो अलावा एक 21 मंजिला इमारत दे नाल ड्रोन टकराउण तों बाद अग लग गई जिस करके करीब 400 लोकां नूं इमारत तों बाहर कढ़िया गया। मास्को दी तेल रिफाइनरी दी सहूलत नूं भी नुकसान पहुंचण दी जानकारी मिली है ते दूजे पासे यूक्रेनी अधिकारियां ने कहा कि रूस ने रात पर कीव ते हमले कीते ने जिन्हां विच 4 लोकां दी जान गई है जिन्हां विच 3 बच्चे शामिल दस्से गए हन। पाकिस्तान दी खबर है जिथे साबका प्रधानमंत्री इमरान खान दी भैण अलीमा नूं एतवार यानी कि अज लाहौर स्थित उन्हां दे घर तों गिरफ्तार कीता गया। उन्हां ने 27 सितंबर नूं इमरान खान दी रिहाई दी मांग नूं लैके PTI दे विरोध प्रदर्शन दे विच शामिल होणा सी। एक दिन पहलां शनिचरवार नूं इमरान खान दा अडियाला जेल दे विच मेडिकल चैकअप भी होया। जियो न्यूज़ दे सूत्रां मुताबक इह जांच पिंस दे एक डाक्टर दी अगवाई दे विच कीती गई है। इस विच ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल अते अखां दे टेस्ट शामिल हन। इस तों पहलां 18 अगस्त नूं पाकिस्तान दी सुप्रीम कोर्ट ने उस नूं यानी इमरान खान नूं इलाज दे लई एक निजी हस्पताल भेजण दा हुक्म दित्ता सी। हालांकि इमरान खान नूं पाकिस्तान दे एक वड्डे सरकारी मेडिकल हस्पताल दे विच ले जाया गया। डॉक्टरी जांच तों बाद इमरान खान नूं वापस अडियाला जेल दे विच भेज दित्ता गया। ते फिलहाल अज दीआं खबरां दे विच इन्ना ही। तुसीं मैनूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।

0: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0200-02-03 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890-687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कैलगरीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सब लव 94.7
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement from store opening.
5: So, ये जिधर तुझे message सुन रहे थे कि basically क्योंकि ये भी AI दिन आल बनाया गया, ते जित्थे AI जिधर दुनिया पर देवेच्छा

0: मॉडल्स रिलीज करके डेवलपर्स की मदद कर रहा है। साथ ही चीन में एडवांस्ड एआई की सेफ्टी की जिम्मेदारी सिर्फ टेक कंपनियों पर नहीं है, डेवलपर्स को सरकारी नियमों का पालन करना होता है और सिक्योरिटी रिव्यू करवाना पड़ता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन एआई एजेंट्स के लिए एक मैंडेटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड पर काम कर रहा है। अमेरिकी एआई के साथ साथ चीनी एआई भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर है और चीन की स्ट्रैटेजी है एआई को एक अवसर की तरह देखना, ना कि डर की तरह। एक हालिया सर्वे के मुताबिक चीन के यूजर्स ने जर्मनी और अमेरिका के यूजर्स की तुलना में एआई पर कहीं ज्यादा भरोसा जताया है। डीडब्ल्यू ने चीन की टेक कंपनी में काम कर रही एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट से जाना कि क्या वो एआई के जोखिम को लेकर चिंतित हैं। उनका जवाब ये था,
1: मुझे पूरी उम्मीद है कि जब नई टेक्नोलॉजी या एआई आएगा तो उसके बराबर की एक और ताकत भी होगी जो स्मार्ट एआई की सीमा तय कर सकेगी।
0: तो आपका क्या मानना है, क्या एआई पर सख्त नियम जल्द से जल्द लागू कर देने चाहिए या ये कदम एआई के विकसित होने की रफ्तार को धीमा कर देगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
2: बिल्कुल जी, ए दे नाल जिदा मैं पहला भी कहा भी काफ़ी कुछ जरा चेंज हो रहा दुनिया के लोग जड़े ने डरते भी है कि भी कितने नुकसान जरा बहुत ज्यादा ना करते। फिल्म की भी एग्जाम्पल दी गई है भी किस तरीके दे नाल फिल्म दे विच सारा कुछ अपने आप ही रोबोट जड़े ने वो रोबोट बनाने शुरू कर देंगे तो फिर तुसी सोची जाओगे भी किदा आप जरा काम अगे लैके जावे। सो ये कंट्रोल तो जरा बहर हों जा रहा। एक गीत सुन लो नाल नाल गल्लां बातां दे नाल नाल कुछ ना कुछ गीत संगीत भी चलता रहे तो मैनूं लगता भी वह ठीक रहिंदा क्योंकि जदों गाने सुनते हैं तो गाने दे नाल माहौल थोड़ा जिहा वह ज्यादा भारा नहीं हुंदा। सो
3: सुन दे इन्नी सालां बाद कैनेडा आए हो और थोड़े सारे दे सारे शोज सोल्ड आउट ने, एग्जैक्टली की फीलिंग हो रही है इस वक्त?

0: ਤੇਰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਵਾਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਬਸ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਖਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਗੇ ਲੱਗੇ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਨੀਲਾ ਮੈਂ ਨੀ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
1: ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਡੀ ਘਰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਚੇਂਜਿਸ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM 'ਤੇ
2: ਹੋਏ ਹੈ जर्मनी के उत्तर पूर्वी राज्य मेक्लेनबुर्ग वेस्टर्न पोमेरेनिया में विधानसभा चुनाव है और यहाँ लोगों का इतनी बड़ी संख्या में जुटना आम नहीं है यहाँ पहुंचे लोग मानते हैं कि धुर दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AfD और उसके समर्थक उसी चरमपंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध के बाद नकार चुका है ये विधानसभा चुनाव सिर्फ एक राज्य की सियासत पर असर नहीं डालेंगे अगर AfD सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है या चांसलर की CDU पार्टी की सीटें बहुत घटती हैं, तो बर्लिन में बैठी संघीय सरकार पर दबाव बढ़ेगा सवाल उठेगा कि क्या देश का एक बड़ा हिस्सा वाकई चांसलर फ्रीडरिश मैर्ट्स पर भरोसा खो रहा है और आखिर AfD की पूर्वी जर्मनी में मजबूत पैठ और बढ़ते समर्थन की वजह क्या है AfD का एक आम वोटर कैसा होता है क्या वो वजह हैं जिनके चलते कभी सेंटर राइट और सेंटर लेफ्ट की पार्टियों को वोट करने वाले लोग एक धुर दक्षिणपंथी पार्टी के पीछे चल दिए लेकिन सबसे पहले मेक्लेनबुर्ग वेस्टर्न पोमेरेनिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ये बाल्टिक सागर के किनारे बसा पोलैंड के साथ सटा एक जर्मन राज्य है 1990 में एकीकरण से पहले यह इलाका पूर्वी जर्मनी में था यूनिफिकेशन के बाद दो बार सेंटर राइट पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की सरकार रही और 1998 से सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की अगुवाई में सरकारें बन रही हैं। मेक्लेनबुर्ग और पोमेरेनिया इलाकों से मिलकर बना यह राज्य ऐतिहासिक रूप से कभी समृद्ध नहीं रहा न राजशाही के दौर में न पूर्वी जर्मनी के कम्युनिस्ट शासन के वक्त मेक्लेनबुर्ग वेस्टर्न पोमेरेनिया की आबादी करीब 16 लाख है जर्मनी की कुल आबादी का करीब 2%। यहाँ जनसंख्या घनत्व पूरे जर्मनी में सबसे कम है यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी है कृषि और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार तो है लेकिन तनख्वाहें कम हैं। 5 trillion की अर्थव्यवस्था वाले जर्मनी में मेक्लेनबुर्ग वेस्टर्न पोमेरेनिया की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है रोस्टॉक यूनिवर्सिटी में कंपेरेटिव गवर्नमेंट के प्रोफेसर और राजनीतिक विज्ञानी वोल्फगांग मुनो इस राज्य में लोगों की कमजोर आर्थिक स्थिति और कम आमदनी को असंतोष की एक बड़ी वजह मानते हैं
3: मेक्लेनबुर्ग वेस्टर्न पोमेरेनिया राज्य आर्थिक रूप से काफी कमजोर रहा है देहाती इलाकों के कई गांवों में अब सिर्फ कुछ बुजुर्ग लोग ही बचे हैं क्योंकि युवा लोग ये इलाके छोड़कर हैम्बर्ग बर्लिन लाइप्ज़िग और रोस्टॉक जैसे बड़े शहरों में चले जाते हैं गांव देहात काफी सुनसान हो गए हैं और ये लोग खुद को पीछे छोड़ा हुआ महसूस करते हैं इसीलिए लोग सोचते हैं

0: की आर्थिक रूप से भी उनकी अनदेखी हुई है और क्योंकि वो अपनी तुलना पश्चिमी जर्मनी और पश्चिमी यूरोप से करते हैं जहां सैलरी ज्यादा है, इसीलिए यहां के लोगों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। पहले कम्युनिज्म के दौर में वो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो सके और फिर उनकी नजर में एकीकरण के वादे भी पूरे नहीं हुए।
1: पहले कोरोना संकट और फिर यूक्रेन युद्ध के बाद से बड़ी महंगाई और फिर इन सब के बीच कम पेंशन, मेक्लिनबुर्ग वेस्टर्न पोमेरेनिया के चुनाव में ये बड़े मुद्दे हैं। एक ताजा सर्वे के मुताबिक AFD को चुनाव से 48 घंटे पहले तक 36% मतदाताओं का समर्थन हासिल है। AFD जानती है ये मुद्दे जनता के लिए मायने रखते हैं।
2: तो हमारे लिए तीन सबसे बड़े मुद्दे हैं, शिक्षा, फिर है ऊर्जा जो यहाँ बहुत महंगी है। हम चाहते हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम दोबारा चालू हो ताकि किफायती गैस मिल सके। और जाहिर तौर पर यहाँ आप्रवासियों की वजह से बहुत अपराध भी हैं। हम इस पर लगाम चाहते हैं, हालात पर करीबी नजर रखी जा सके और तय किया जा सके कि किसे कानूनन यहां से जाना चाहिए। ये यहां मेक्लेनबुर्ग वेस्टर्न पोमेरेनिया के अहम मुद्दे हैं। और सैक्सनी की तरह पेंशन भी हमारे लिए अहम है, यहां पेंशन बेहद कम है और सैलरी भी।
1: पढ़ाई, महंगाई, पेंशन और माइग्रेशन, इन्हीं मुद्दों को लेकर AFD मेक्लेनबुर्ग वेस्टर्न पोमेरेनिया के मतदाताओं के बीच जा रही है। तो आमतौर पर AFD का वोटर कौन होता है?
0: आमतौर पर AFD के मुख्य समर्थक पुरुष हैं और 35 से 50 साल की उम्र के आसपास वाले हैं। उनकी शिक्षा कम या मध्यम स्तर की होती है, वो किसी धार्मिक पहचान से जुड़े नहीं होते और शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा रहते हैं। लेकिन खासकर हाल के सालों में AFD को महिलाओं, बुजुर्गों और कामगारों के बीच भी कामयाबी मिल रही है। सबसे पहले उन्होंने सभी दक्षिणपंथी कट्टरपंथियों को जमा किया जो जर्मनी में हमेशा से मौजूद थे लेकिन अलग अलग पार्टियों में बटे हुए थे, और अब वो सभी को AFD के भीतर एक साथ ला रहे हैं, यानी उन्हें जो दक्षिणपंथी कट्टरपंथी अधिनायकवादी और इमिग्रेशन के खिलाफ हैं।
1: धुर दक्षिणपंथी पार्टी AFD माइग्रेशन के मुद्दे पर बहुत कड़ा रुख रखती है। 6 सितंबर को पास ही के सैक्सनी नहाल्ट राज्य में हुए चुनाव में करीब 44% वोट के साथ AFD सबसे बड़ी पार्टी बनी है। यहां इसकी राज्य इकाई को देश की खुफिया एजेंसी ने राइट विंग चरमपंथी घोषित किया हुआ है। माइग्रेशन का मुद्दा विदेशों से आकर जर्मनी में बसे लोगों के लिए मायने रखता है।
3: 2-3 साल पहले मैं यहाँ पे आई थी एज अ डुअल PhD रिसर्चर। अगर मैं सोचूंगी इन फ्यूचर मुझे रहना है कि नहीं, तो मुझे मतलब दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली द पॉलिटिकल सिनेरियो इज चेंजिंग। हो सकता है कि हमें आगे से वर्क परमिट मिलने में बहुत डिफिकल्टी हो।
4: तो अभी रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि देर आर लाइक लॉट ऑफ फंड कट ऑफ्स बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन। सो इफ योर प्रोफेसर इज मोटिवेटेड, उनके पास अगर फंडिंग है तो आप ऑलवेज वेलकम है। बट मैंने जैसे सुना कि अभी पॉलिटिकल सिनारियो चेंज हो रहा है तो आगे जाके और भी दिक्कत बढ़ेगी।
5: पर्सनली मेरा या मेरी फैमिली के साथ ऐसा कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ओवरऑल अच्छे हुआ। लेकिन कुछ लोग हैं जो फील करते हैं, हम फील करते हैं कि भाई उनके दिल में या उनके माइंड में हमारे खिलाफ ऐसे जैसे नफरत पाई जाती है, वो शायद खुल के इजहार नहीं कर पाते। अगर AFD जीत जाती है या राइट विंग की कोई पार्टी जीत जाती है तो उनको मजीद मोटिवेशन मिलेगी कि हम खुल के अपने हेट्रेड का या ख्यालात का इजहार कर सकें।
1: जर्मनी में किसी चुनावी दल का राज्य संगठन अलग एजेंडा और फैसले ले सकता है, हालांकि ये संघीय स्तर पर पार्टी की लाइन के आसपास ही होता है। सैक्सनी अनहाल्ट में AFD की राज्य इकाई का कहना था कि बिना परमिट वाले लोगों को तुरंत जर्मनी छोड़ना होगा, लेकिन मेक्लेनबुर्ग वेस्टर्न पोमेरेनिया की राज्य इकाई इस डर को बेबुनियाद बताती है।
2: नहीं, हरगिज नहीं, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, ये तो डर फैलाना है। ये तो माइग्रेशन की पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए सरकार का एक औजार जैसा है। मुझे ये बेहद घटिया लगता है, हम कानून की बात करने वाली पार्टी हैं।
1: भले ही AFD के मेक्लेनबुर्ग वेस्टर्न पोमेरेनिया इकाई माइग्रेशन पर सैक्सनी अनहाल्ट जैसा कड़ा रवैया ना रखती हो, फिर भी सवाल बरकरार हैं।
6: री माइग्रेशन उनके चुनावी कार्यक्रम में शामिल है। सैक्सनी अनहाल्ट में तो ये निश्चित तौर पे था। इसका मतलब उनकी परिभाषा के हिसाब से ये है कि जिन लोगों के पास जर्मनी में रहने का परमिट नहीं है उन्हें तुरंत देश छोड़ना होगा। और सिविल सोसाइटी समूहों के बीच इसकी व्याख्या और इसे लेकर चिंता ये है कि इससे ऐसा माहौल बनेगा जहां प्रवासी पृष्ठभूमि वाले लोग जो कुछ अलग दिखते हैं

0: शक की नजर से देखे जाएंगे। साथ ही एएफडी उन लोगों को साथ लाने पर सहमत है जो कट्टर दक्षिणपंथी विचार रखते हैं और उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। पूर्वी जर्मनी के पुराने हिस्से में आने वाले पड़ोसी राज्य थुरिंजिया के उनके एक क्षेत्रीय नेता ब्योर्न होइके को कानूनी तौर पर नाजी कहा जा सकता है।
1: बीते कुछ वर्षों में सोशल मीडिया ने चुनाव में अहम भूमिका निभाई है।
2: सोशल मीडिया इन भावनाओं को बढ़ावा देता है। इन भावनाओं के बीच पुराना मीडिया इस इलाके में ज्यादा कामयाब नहीं है। लोग अब पब्लिक मीडिया पर भरोसा नहीं करते, वो अब अखबार नहीं पढ़ते जैसे स्पीगल साइट्स जैसे बड़े राजनीतिक अखबार, वो बस अपने सोशल मीडिया के इको चैम्बर्स पर निर्भर करते हैं और वहाँ उन्हें कुछ अजीब तरह की जानकारी मिलती है, कभी कभी फेक न्यूज, कभी बेहद आलोचनात्मक जानकारी, और ये सारी वजहें उस सोच और उस भावना को जन्म देती हैं कि सब कुछ खराब हो रहा है। और सिर्फ एएफडी हर चीज में पूरी तरह से बदलाव का वादा कर रही है। एएफडी ये वादा कर रही है कि सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसे पहले हुआ करता था, सब बेहतर होगा, हम पीछे लौट रहे हैं, जर्मनी फिर महान बनेगा। ये एक छवि है, ये एक नैरेटिव है, ये अतीत की तरफ देखने वाला एक तरह का आदर्श सपना है जिसे लोग सुनना पसंद करते हैं।
1: मेक्लेनबुर्ग वेस्टर्न पोमेरेनिया में एएफडी सरकार बनाने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। ताजा सर्वे में चांसलर मेर्ट्स की पार्टी सीडीयू करीब 7% वोट के साथ इतिहास के अपने सबसे बुरे प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है। सैक्सनी-अनहाल्ट के बाद एक और राज्य में सीडीयू का खराब प्रदर्शन रहता है तो क्या वो चांसलर के राजनीतिक भविष्य के लिए एक खतरा साबित होगा?
0: एएफडी की सैक्सनी-अनहाल्ट में जीत क्षेत्रीय स्तर पर फ्रीडरिश मैच के कंजर्वेटिव खेमे के लिए करारा झटका थी, लेकिन कुल मिलाकर वो फ्रीडरिश मैच की साख के लिए भी बड़ा झटका थी। वो एक बार राजनीतिक मुकाबले में ये कहते हुए उतरे थे कि वो एएफडी को आधा कर देना चाहते हैं। अब एएफडी ने इसी एक राज्य में उनकी पार्टी को आधा कर दिया है और मेक्लेनबुर्ग वेस्ट पोमेरेनिया मनोवैज्ञानिक रूप से अहम होगा क्योंकि ये फिर से उनकी लोकप्रियता की परीक्षा है जो जर्मनी में फिलहाल ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। करीब 13% जर्मन मानते हैं कि ये सरकार सच में ठीक ठाक काम कर रही है और चांसलर खुद को ऐसी स्थिति में पा रहे हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है।
1: सितंबर में हुए एक पोल के मुताबिक पूर्वी जर्मनी में सिर्फ 7% वोटर ही फ्रीडरिश मैर्ट्स के काम से संतुष्ट हैं। प्रोफेसर मूनो के मुताबिक किसी चांसलर के लिए कभी इतना कम समर्थन नहीं रहा और इसे एएफडी की सफलता की वजहों में गिना जा सकता है। जर्मनी के पूर्वी इलाकों में रह रहे लोगों के मन में नजरअंदाज किए जाने का भाव उन्हें पारंपरिक पार्टियों से दूर ले जा रहा है।
2: हमें मानना होगा कि हमने एकीकरण के वादों को कुछ हद तक पूरा किया। पूर्वी जर्मनी में बुनियादी ढांचा पश्चिमी जर्मनी के ज्यादातर हिस्सों से कहीं बेहतर है। शहर अच्छी तरह बनाए गए हैं, सड़कें बेहतर हैं, यहाँ तक कि ट्रेनें भी पश्चिमी जर्मनी के मुकाबले समय पर रहती हैं। फिर भी कई लोगों को ऐसा नहीं लगता। इसे निजी स्तर पर महसूस किया जाने वाला सब्जेक्टिव रिलेटिव डेप्रिवेशन कहा जा सकता है, यानी वो सोचते हैं कि दूसरे लोगों को ज्यादा मिलता है और उन्हें वो नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। खासकर हाल के सालों में यूरोप में जितने संकट आए, यूरो संकट, इमिग्रेशन संकट, महामारी और अब यूक्रेन जंग के साथ ऊर्जा और महंगाई का संकट, इन सब की वजह से वो इससे डरते हैं कि भविष्य में हालात और खराब हो सकते हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि फिलहाल मेरी हालत ठीक है, मैं ठीक ठाक काम चला रहा हूं, लेकिन भविष्य में क्या होगा। ये दो पहलू हैं जिन्हें संभालना स्थापित पार्टियों के लिए बहुत बहुत मुश्किल है।
1: मेक्लेनबुर्ग वेस्टर्न पोमेरेनिया के मतदाताओं की मांगे जायज हैं। वहाँ अच्छे पैसे वाली नौकरियां कम हैं, 45 साल नौकरी के बाद भी इतनी पेंशन नहीं है कि महीने का खर्च निकल सके, युवाओं को नौकरी के लिए अपना गांव कस्बा छोड़कर किसी बड़े शहर का रुख करना पड़ता है, साथ ही अप्रवासियों के प्रति लोगों के मन में शक गहराया है। फिलहाल चुनाव में दो पार्टियां लीड में हैं, एक है 28 साल से राज्य में सरकार चला रही एसपीडी जो और ज्यादा रोजगार पैदा करने, शिक्षा व्यवस्था सुधारने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का वादा कर रही है। दूसरी तरफ है अब तक किसी भी राज्य में अपनी पहली सरकार बनने का इंतजार कर रही एएफडी, वो भी रोजगार पैदा करने, बेहतर शिक्षा और माइग्रेशन पर सख्ती बढ़ाने का वादा कर रही है। तय मेक्लेनबुर्ग वेस्टर्न पोमेरेनिया के मतदाताओं को करना है कि वो 20 सितंबर को किस पर ऐतबार करें और बर्लिन की संघीय सरकार को क्या संदेश भेजें।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0300-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6